रामचंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय।

यान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं तिरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यं।

जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महा।

प्रस्तुत है श्री मद्भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान अपनी समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं, वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

हे भरतऋषभ, दुष्ट नराधो मूढ़ असुर व माया के वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में मुझको ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है।

श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न देवताओं में उपासकों की श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। देव पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

0: इच्छति।
1: मैं पुराण पुरुष पुण्य सलिला गोमती का अभिनंदन करता हूँ। गोमती अथवा धेनुमती नाम से ही इसकी महिमा का बखान किया जाता है। इसकी पवित्रता से प्रभावित होकर ही देश के कई जलाशयों का नाम गोमती रखा गया है। काठियावाड़ के द्वारिका धाम मंदिर के निकट की नदी भी गोमती कही जाती है। पवित्र जल वाली गोमती प्रणाम।
2: ये किसने मुझे स्मरण किया है? किसने जल तरंगों के तार झंकार दिए हैं? हाँ, मैं गोमती हूँ। मेरा जन्म हिमालय से नहीं, हिमालय की तलहटी में पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में हुआ। मनियाकोट मेरा मायका है और माधोटांडा कस्बे की फुलहर झील मेरी माँ है।
1: इस उद्गम के लिए कहा जाता है कि एक सिद्ध संत की आस्था का वरदान है गोमती।
3: स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक श्लोक में जिन नदियों को पुण्य सलिला, पवित्र जलवाली और शुभ माना गया है, उनमें एक है गोमती।
4: श्री अनिल स्वरूप, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया।
3: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जिला गजेटियर के अनुसार जिले की नदियां अनेक विशिष्ट प्रणालियों की हैं। जिले के उत्तर की भूमि की संकीर्ण पट्टी का जल निकास होता है शारदा नदी में। पूरनपुर परगने के मध्यवर्ती भाग से बहुत सारे सोते फूटते हैं जो मिलकर बन जाते हैं गोमती।
1: मनियाकोट के आसपास कई जल स्रोत मिलकर एक होते हैं जो वास्तव में भाबर क्षेत्र के पथरीले इलाके के नीचे नीचे से आते हैं। ये अनेक शिराएं मिलकर बनाती हैं एक जलधारा, एक जीवन धारा। हमारी संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है।
2: जनमानस से प्रवाहित होकर जब मैं चलने लगती हूँ तो मेरे संग की सहेलियां मुझसे मिलती हैं। दूर तक मैं उत्तर से दक्षिण की ओर भागती हूँ और फिर प्रवेश करती हूँ शाहजहांपुर जनपद में।
1: इसी जनपद से गोमती का रूप निखरता है। ये सोया सोया पानी जब जाग कर आगे चलता है, बढ़ता है, तो समाज के संस्कारी उपवनों को सींचता जाता है। रुहेलखंड में अपना बचपन बिताकर 67 किलोमीटर की यात्रा करके गोमती एक अल्हड़ किशोरी बनकर अवधांचल की सीमा में पांव रखती है।
2: परगना मोहम्मदी और पास गांवों के बगल से निकलते हुए मैं लखीमपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक एक

0: 52 किलोमीटर लंबा सफर तय करती हूँ। तराई के हरे भरे जंगलों की परछाइयाँ समेटते हुए, वन पक्षियों का कलरव सुनते हुए मैं बहती रहती हूँ।
1: गोमती एक नव यौवना की भांति इठलाती हुई चलती है। खीरी जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के दक्षिण से होती हुई हरदोई जनपद में कदम रखती है। यहां से ये हरदोई सीतापुर जिलों की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहां मिश्रित तहसील में बाईं ओर से आकर कठिना नदी इसे अपना अर्घ्य देती है। कठिना नदी शाहजहानपुर जिले की मोती झील से निकलकर आती है। अब आता है गोमती का पहला पड़ाव, नैमिषारण्य तीर्थ।
2: पृथिव्याम यानी तीर्थानी तानी तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में है।
3: नैमिषारण्य के जगदाचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने बताया,
2: सतयुग का ये महान तीर्थ इसलिए अद्वितीय कहा गया है कि यहाँ सतयुग में 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक ज्ञान किया है। पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है।
0: सतयुग से ही इस साधना स्थल आध्यात्मिक पीठ से सद्ज्ञान का प्रसारण होता रहा है।

यहां सूत जी के श्रीमुख से मुनियों ने भगवत कथा का श्रवण किया था। यहीं पर वेदव्यास द्वारा वेद विभाजन किया गया और हुई 18 पुराणों की रचना।

0: इसी नैमिषारण्य में सम्राट मनु और शत्रुपा ने परमेश्वर को पुत्र रूप में पाने के लिए गोमती तट पर तपस्या की थी।
1: पहुंचे

0: गोमती हरदोई जिले की सीमा रेखा बनकर हत्या हरण तीर्थ के निकट से होती हुई जब लखनऊ जिले की ओर आने लगती है तो इसके बाएं तट पर सरायन नदी गले मिलती है।
1: सरायन को साथ लेकर मैं आती हूँ लखनऊ जनपद में। महोना मलिहाबाद परगने के बीच से होती हुई मैं बसहरी घाट पर लासा देवी के ऊंचे मंदिर के नीचे से निकलकर बख्शी का तालाब कठवारा की चंद्रिका देवी के पांव धोती हूँ। यहाँ आसपास आमों के बाग हैं। आम्र मंजरी का मादक सौरभ बसंत ऋतु में मेरे तटों पर पसरे आंचल को सुवासित करता है। गर्मियों के मौसम में मेरे दोनों किनारों पर सुनहरे लखनऊवा खरबूजे पुखराज की तरह बिखर जाते हैं।
2: उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर कुछ खत्ते ऐसे हैं जहाँ पर कि आम की बहुत सी किस्में उगाई जाती हैं।
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने जानकारी दी।
2: लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजरी ये किस्में जो हैं प्रदेश की मुख्य किस्में हैं। विशेष करके दशहरी का जो मातृ वृक्ष है वो करीब 200 साल से पुराना है। वो अब भी जीवित है दशहरी गांव में और उसमें काफ़ी अच्छी फलत आती है। किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जो पहली फल पट्टी आम पट्टी घोषित किया वो काकोरी, मलिहाबाद और माल की फल पट्टी है। और गोमती नदी के आसपास जितने और शहर पड़ते हैं वहाँ पर भी आम की खेती बहुत अच्छी की जाती है।
0: अब रानी मऊरेथा के बीच होती हुई गोमती मूसाबाग और छैला गांव से होकर आती है गौ घाट पर। अब आ गया लखनऊ, कोसल जनपद का पश्चिमी दुर्ग द्वार लक्ष्मणपुर, जिसने पौराणिक काल देखे, महाजनपदीय युग देखे, फिर राजपूत साम्राज्य के बाद

0: खरुंग रजवासियों की राजधानी बनी लखनावती। लखनावती को छोटी काशी और गोमती को आदि गंगा भी कहा जाता है। आज भी गोमती लखनऊ के लक्ष्मण टीले का पद प्रक्षालन कर रही है। शेखजादों का लखनऊ, नवाबों का प्यारा लखनऊ और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मैंने इसे बहुत निकट से देखा है। मुगलकालीन नवाबों के चढ़ते उतरते वैभव को और गोमती के दाएं तट पर मच्छी भवन किले को बनते देखा, फिर सन 57 के स्वाधीनता संग्राम में उजड़ते भी देखा। लखनऊ के पक्के पुल से डूबते हुए सूरज को देखिए तो आपको एहसास होगा कि लखनऊ की शाम को लोग शामे अवध क्यों कहते हैं।
1: गोमती का जो महत्व है उसके बारे में ना तो इतिहासकारों ने कोई विशेष ध्यान दिया है और ना साधारण लोगों ने।
2: इतिहास वेत्ता डॉक्टर सुधींद्र नाथ कानून गो का मानना है।
1: हम लोग तो जैसे मैंने गंगा जमुना संस्कृति की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे विचार में हम लोग उसको गंगा गोमती तहजीब या गंगा गोमती संस्कृति क्यों नहीं कहेंगे। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि अवध जर्नल में 1971 में प्रोफेसर मुनीस रजा ने एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक लेख लिखी, डिलिमिटिंग अवध सुबह। उस अवध सुबह में सिर्फ गंगा जमुना के महत्व के बारे में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने गोमती का भी अपना महत्व के बारे में उन्होंने काफी प्रकाश डाला है। ये जो गंगा गोमती संस्कृति के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसको केवल एक कॉम्पोजिट कल्चर या के दृष्टिकोण से तो आलोचना तो करना तो चाहिए, लेकिन इसका आधार केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में जो संबंध है वो नहीं है। इस कॉम्पोजिट कल्चर यानी गंगा गोमती संस्कृति का तो आधार जो है उसका नींव प्राचीन भारत में डाली गई। इसी गोमती के किनारे कितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे बाग बनाए गए हैं और उस बागों के साथ हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं, चाहे सिकंदरबाग हो चाहे दूसरी चीज हो। और फिर मैं फिर से यही कहूंगा, 1857 के क्रांति के पहले रसल साहब जो टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट वो आए थे लखनऊ में, तब लखनऊ के बारे में वही गोमती किनारे पे खड़े होके लखनऊ के जो इतनी सुंदर दृश्य देख के उन्होंने बताया कि इस तरह का शहर जो है ना तो इसकी तुलना ना तो रोम के साथ तुलना की जा सकती है ना कॉन्स्टेंटिनोपल के।
3: लखनऊ में मेरे घाटों पर जब तब भीड़ उमड़ कर आती है। दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए, चेटीचंड में वरुण पूजा के लिए या शहीद स्मारक पर दीपदान के लिए। सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे अघन मास चलता रहता है। लखनऊ के कुछ घाटों पर आप मंदिरों में मुझे मूर्तिमान भी देख सकते हैं। अगर आप मेरी 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा देखना चाहें तो इसी जनपद के डिगोई ग्राम में देख सकते हैं। मेरे पानी में आई अपार बाढ़ ने लखनऊ नगर के कुछ हिस्सों को कई बार नहला दिया है। सन 1915 और 1923 की भीषण बाढ़ लोगों को भूली नहीं होगी, पर 1960 में तो हजरतगंज में नावें चलने लगी। कभी मेरे जल की स्वच्छता एवं पवित्रता के कारण मुझे आदि गंगा कहा जाता था। आज आबादी के दबाव, औद्योगिकरण तथा लापरवाही ने मुझे गंदे पानी का दरिया बना डाला है।
4: गोमती नदी पीलीभीत जनपद के माधो टांडा गांव से निकलकर लगभग 940 किलोमीटर की यात्रा तय करके गाजीपुर जनपद में ओडियार गांव में जाके गंगा नदी में मिलती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 8 जनपदों

0: होकर ये नदी गुजरती है। इस नदी में जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई स्थानों पर किया जाता रहा है।
1: श्री प्रदीप कुमार, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सचिव पर्यावरण उत्तर प्रदेश ने बताया,
0: इस अनुश्रवण से ये स्थिति सामने आई है कि कई स्थानों पर जो निर्धारित मानक हैं उनसे जल की गुणवत्ता काफी खराब है। विशेष रूप से जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में जितना पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही जो प्रदूषण का स्तर है जिसको बीओडी के रूप में नापा जाता है, तो बीओडी का स्तर भी अपस्ट्रीम ऑफ बैराज में निर्धारित मानकों की अपेक्षा काफी अधिक पाया गया है। ये जो गोमती नदी में प्रदूषण है ये मुख्य रूप से दो कारणों से है। पहला तो ये कि गोमती और इसकी सहायक नदियों के किनारे करीब 18 औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो अपना औद्योगिक कचरा गोमती नदी में प्रवाहित करती हैं। इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और 18 इकाइयों में से 14 इकाइयों में तो संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 2 इकाइयों के बंदी के आदेश जारी किए गए हैं शासन द्वारा और बाकी 2 इकाइयों में संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्रदूषण गोमती में आज हो रहा है उसका कारण यह है कि लखनऊ शहर और बाकी जो शहर हैं उनका सीवेज और बाकी शहर का जो कचरा होता है वो बिना शुद्धिकरण किए गोमती और सहायक नदियों में डाला जा रहा है। जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार ये स्थिति निकल के आई है कि लखनऊ में शहर का जो सीवेज है उसकी मात्रा लगभग 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है और 50 टन बीओडी लोड प्रतिदिन नदी में सीवेज द्वारा डाला जा रहा है। इसके विपरीत जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा लगभग 2.5 टन प्रतिदिन बीओडी लोड नदी में डाला जाता है। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षा शहर का सीवेज शुद्धिकरण ना हो पाने के कारण 25 गुना बीओडी लोड नदी में प्रवाहित हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इसके बारे में शासन क्या कर रहा है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण क्रियान्वित होने वाला है जिसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत जो गोमती नदी है उसके किनारे स्थित 3 शहर जिनमें लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर हैं उनमें शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। नालों में जो पानी जाता है जो बाद में नदी में जाके मिलते हैं उनमें पानी डाइवर्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
2: लखनऊ जनपद में अखंडी मंझावा गांव में, झिलंगी गोपरा मऊ में और बेता कांकराबाद में मेरे दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। कुकरायल ही यहाँ बाएं तट पर मुझसे संगम करती है। लखनऊ के पिपरिया घाट के बाद से शहर मुझसे दूर हो जाता है और मोहनलालगंज के सिकंदरपुर खुर्द के आगे लखनऊ जनपद भी मुझसे छूट जाता है। यही गस्कर में रेठ और सलेमपुर में लोनी नदी मुझ में मिल जाती हैं। अब आता है बाराबंकी जिले का दक्षिण भूभाग। यहाँ हैदरगढ़ के निकट से मैं गुजरती हूँ और इसी जिले में आकर मुझसे गले मिलती है कल्याणी नदी। उत्तर पश्चिम दिशा से मेरा प्रवेश सुल्तानपुर जिले में होता है। यहाँ उत्तर में मीरनपुर और दक्षिण में बरौंसा है। पास ही है जगदीशपुर की नए औद्योगिक विकास से जगमगाती धरती। इसी सुल्तानपुर शहर के बीच मैं चुपचाप निकल जाती हूँ सीता कुंड तीर्थ से। त्रेता युग में भरत जी चरण पादुका लेकर इसी मार्ग से अयोध्या लौटे थे।
3: सही।

0: अल्देबाऊ और चांदा के बीच होकर पपड़िया घाट के बाद आता है धौत पाप तीर्थ। इस स्थान पर अल्देमऊ नूरपुर परगने में मेरे तट पर सतई बाबा का प्रसिद्ध मठ है, जहां मेला लगता है। खुदाई में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। भरों का राज सदियों से रहा है। शेरशाह के दो किले भी हैं। यही चांदीपुर में कंदूना ला कर मिलता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ चलकर सिगरामऊ से जिला प्रतापगढ़ को छूकर मैं जौनपुर की मेहमान बनती हूँ।
1: मेरे जहन में इस वक्त एक अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात याद आ रही है। एक बार उन्होंने कहा था कि गोमती एक अत्यंत सुंदर नदी है, और उन्होंने गोमती को गोमती ना कहकर गोमती नदी कहा था। और उसी मनमोहनी गोमती नदी के किनारे ये जौनपुर का शहर बसाया गया था।
2: इतिहासविद डॉक्टर प्रदीप कुमार घोष ने कहा,
1: इस जौनपुर शहर में मध्यकालीन भारत का अतीत सोया पड़ा हुआ है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार जौनपुर का प्राचीन नाम जमदग्निपुर था, जो कि ऋषि जमदग्नि के नाम से रखा गया था। किंवदंतियों के अनुसार एक कथा और प्रचलित है कि रामचंद्र जी ने किरारावीर नाम के एक दैत्य को उसके अत्याचारों के कारण उसका दमन करने आए थे, और उसको दमन करके उसके धड़ को वहीं छोड़ दिया था। और उसी स्थान पर उन किरारावीर के अनुयायियों ने एक मंदिर बनाया उसके नाम को अमर करने के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि उस स्थान का नाम बाद में जौनपुर पड़ा। लेकिन अय्या बिन अहमद ने अपने तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है कि फिरोज़ तुगलक जब अपने बंगाल अभियान के लिए जा रहे थे
2: जी।
1: तो रास्ते में अत्यधिक वर्षा के कारण उन्हें एक जफराबाद नामक स्थान पर रुकना पड़ा, और वहीं से उन्होंने दूर गोमती को बहते हुए देखा। उस लुहावनी मनमोहनी दृश्य को देखकर उनके मन में आया कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए। और साथ में तक सब एक उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद उनके दिमाग में था कि उन्होंने सोचा कि उस जगह को, उस नए शहर को उनके बंगाल अभियान के लिए एक फोकल पॉइंट बनाया जाए।
0: सन 1567 में मुगल सम्राट अकबर जौनपुर पधारे तो उन्होंने देखा मेरे किनारे एक औरत खड़ी रो रही है।
3: अरे नदी के सुनसान किनारे पर खड़ी तुम किस लिए रो रही हो?
4: जहां पना, मैं एक गरीब विधवा औरत हूं। मैं चरखे पर सूत काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं सूत बेचने दरिया पार आई थी, लेकिन अब लौटते वक्त यहाँ कोई नाव नहीं है, अंधेरा होने को है। उधर मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते थक जाएंगे और भूखे ही सो जाएंगे।
3: आए नेक खातून, मुझे तुम्हारे दुख की दास्तान सुनकर बेहद रंज हुआ है। मुनीम खान खाना
5: जी, बंदा परवर,
3: यहाँ पर एक पुल तामीर होना चाहिए।
5: महाबली, आपका हुक्म सर आंखों पर।
6: ₹30 लाख की लागत से तैयार हुआ जौनपुर का शाही पुल। खूबसूरत छतरियों वाला ये गोमती का पुल विश्व का पहला लेवल ब्रिज है। इसी की नकल पर सन 1810 में लंदन शहर का वाटरलू लेवल ब्रिज बनाया गया।
2: जौनपुर में जो एक कॉम्पोजिट कल्चर के जो उद्भव है उसके पीछे कोई कम्युनल टेंशन इस तरह के कोई बात नहीं थी। वो तो लोदी सुल्तान और जौनपुर सुल्तानों के बीच में आपस में जो झगड़ा था माने उसी का एक नमूना है।
7: डॉक्टर सुधींद्रनाथ कानूनगो के अनुसार
2: जौनपुर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो गंगा गोमती संस्कृति के एक अपूर्व झलक आपको मिलेगी। शारकी सुल्तान नगर तो मुसलमान जरूर थे वहाँ पर, चाहे इब्राहिम शर्की हो चाहे हुसैन शाह शर्की हो। मैं शायद आपने गौर किया जो सबसे प्रमुख

0: मस्जिद है जौनपुर में, उसका नाम है अटल्ला देवी मस्जिद। अब ये अटल्ला देवी मस्जिद अभी भी मुसलमान लोग भी कहते हैं। अच्छा, उसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो एक हिंदू था। एक दूसरे मस्जिद जामी मस्जिद, उसका भी महत्व कम नहीं है, उसका भी जो आर्किटेक्ट है वो भी एक हिंदू, उसका नाम दिया हुआ है कमो विषाद्रु। हाँ, ये बात जरूर है कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया कहा जाता था। कहने का मतलब यही है कि जौनपुर और लखनऊ, ये जो दो प्रमुख शहर गोमती के किनारे बसे हुए हैं, ये केवल एक शहर नहीं, एक संस्कृति के भी प्रतीक है।
1: गोमती जौनपुर की झंझरी मस्जिद को अपने दाएं तट पर छोड़कर आती है कागज के इस छोटे शहर में जिसका नाम था जमैथा। यहां महर्षि जमदग्नि रेणुका और परशुराम जी का आश्रम रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे शहरे अनवार का नाम दिया था। यहां फकीरों के कई मजार होने के कारण इसको जनता पीरन शहर भी कहती रही। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जफर के नाम से इसे नाम मिला जफराबाद।
2: जौनपुर के आगे लगभग 29 किलोमीटर पूर्व तिरमुहानी पर सई नदी मेरे दाएं तट पर आकर मिलती है। इस संगम पर हर साल मेला लगता है।
1: गोमती आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व की ओर वाराणसी और गाजीपुर जिले की विभाजक रेखा बनती है। यहीं बाएं किनारे पर इसका संगम होता है नंद नदी से। संगम से 8 किलोमीटर दूर गोमती अपनी पचरंगी चूनर लहराती हुई गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। यहां मार्कंडेय महादेव का सुविख्यात मंदिर है। यह वही स्थल है जहां राजा देवास ने दूसरी काशी बनानी चाही थी।

0: करते।
1: मैं ना पर्वतों से उतरी हूँ ना समुद्र में गिरी हूँ, उत्तर प्रदेश में ही मेरा लय होता है और उत्तर प्रदेश में ही विलय हो जाती हूँ।
2: खीरी जिला गजेटियर के अनुसार नदी के रेतीली मिट्टी के निचले तटों के अलावा कहीं भी गोमती सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है।
3: श्री अनिल स्वरूप ने कहा,
2: अपने पूरे बहाव में गोमती कहीं भी सिंचाई के काम नहीं आती। रेतीली मिट्टी के निचले किनारों पर ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज तथा मौसमी साग सब्जियों की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। सीतापुर पहुंचकर गोमती नदी नावों के उपयोग का अवसर देती है, इसके बाद सीमित रूप से जलमार्ग का काम देती है। जौनपुर के जिला गजेटियर के अनुसार गोमती अपने आकार के बजाय अपने बहाव की लंबाई के लिए उल्लेखनीय है।
1: मैंने प्रगति के पौधों को पानी दिया है और दिया है सारे संसार को प्यार भरा संदेश।
4: गोमती ने जिस पथ को अपना जीवन मार्ग बनाया है, वही पथ इसके गंगा जमुनी चरित्र की पहचान है। गोमती की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सर्वधर्म समन्वय की। इस नदी ने इस महान राष्ट्र के सीने पर चंदन पानी की एक ऐसी लकीर खींची है जिसकी सुगंध ने न केवल देश को वरन सारे संसार को आकर्षित किया है, प्रभावित किया है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की।
2: महाभाग सूत जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी।
1: नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए परंतु उनकी संख्या बड़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय पूछने जा पहुंचे।
3: पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिन की अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे।
4: परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी?
3: ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे।
4: जो आज्ञा परमपिता।
2: उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया।
1: हाँ शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी थे। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो।
2: फिर क्या हुआ ऋषि राज सूत जी?
1: दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया।
5: नारायण नारायण नारायण। आइए महामुनि नारद, विराजिए।
6: धन्यवाद श्री हरि।
5: कहिए, सब कुशल मंगल तो है?
6: नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है?
5: तो फिर आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों?
6: चिंता नहीं महाप्रभु,
5: जिज्ञासा,
6: मात्र जिज्ञासा।
5: जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद?
6: महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है?
5: ऋषिवर, आप तो दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है?
6: प्रभो, दक्ष पुत्र मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं।
5: ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद। हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवीय तत्व भी आ जुड़ेगा।
6: ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु।
5: परंतु? परंतु क्या मुने नारद?
6: प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा?
5: मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं।
6: नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है।
5: हाँ? तो फिर क्या किया जाए मुने नारद?
6: नारायण नारायण, महाप्रभु, आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं, मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें।
5: तो सुनो नारद,
1: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसला कर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत ना था।
2: ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे।
1: हां शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी, धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः एक सहस्र पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां आ पहुंचे।
7: ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं?
6: नारायण नारायण, दक्षराज भटका नहीं रहा हूं मैं। मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं।
7: आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना संन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है?
6: प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
7: तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं भटकाव का मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूं कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा, तेरा कहीं स्थाई वास नहीं होगा।
3: शांत शांत हो जाओ पुत्र दक्ष, शांत। ये तुमने क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र।
7: परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी अपनी कुटिल नीति।
3: कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं, ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है।
4: शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है?
3: हां पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो।
8: जैसी आपकी आज्ञा विधात, जाओ पुत्रों, जाओ, जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो।
9: जैसी आज्ञा।
1: ब्रह्मन, फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तारक्ष तथा 2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृष्णश्व को ब्याह दी।
2: सूत जी, दक्ष की 61वीं पुत्री का क्या हुआ?
1: शिव महिमा का ये प्रसंग अर्थात सती प्रसंग अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है।
2: तो सुनाइए ना सती कथा।

0: अवश्य शौनकजी, एक बार शिव माया के कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं।
1: और ये सत्य भी था सूत जी,
0: परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई।
1: रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया?
0: उन्होंने कामदेव और दक्ष को बुलाकर आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार रुद्र का मन मोहें, उनका ध्यान किसी कमनीय स्त्री के पाणि ग्रहण की ओर आकृष्ट करें।
1: तो क्या कामदेव को या दक्ष को इसमें सफलता मिली?
0: नहीं शौनक जी, अनेक प्रयासों के उपरांत भी महातपस्वी रुद्रदेव अपनी तपस्या पर अडिग रहे। ब्रह्मा दक्ष और कामदेव के साथ अगली नीति के विषय में सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे।
2: नारायण नारायण।
3: प्रणाम परमपिता।
4: प्रणाम पुत्र नारद। विराजिए।
5: प्रणाम मुनि श्रेष्ठ।
2: प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा।
4: हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं।
2: परम पिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है।
5: वो कैसे मुनि नारद?
2: दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी रुद्रदेव को अधिक पूजती है।
6: वो इसलिए नारद मुनि कि काम क्रोध लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं।
2: नारायण नारायण। कामदेव, क्या परमपिता और श्रीहरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है?
6: अब
2: विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता है।
4: पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है, प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है।
2: नारायण नारायण। तो फिर प्रभु, विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं। रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए।
4: नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
5: कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी?
4: हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
7: प्रणाम भगवान विष्णु देवा।
1: कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया?
4: आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है?
1: विधेय, क्या भूल गए? हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी तीन रूप होंगे, लक्ष्मी सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं, अब

0: रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है,
1: परंतु विष्णु हरि निर्विकार योग परायण प्रभो किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में।
0: इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष,
2: आज्ञा श्री हरि।
0: पुत्र, तुम महादेवी शिवा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे वरदान प्राप्त करो कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हों। मात्र वे ही रुद्रदेव की पत्नी होने में सक्षम हैं।
2: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा।
3: प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी,

0: स्वरूपिणी प्रसीद जगन्माए प्रसीद।
1: दक्ष, तुम्हारी इस 3,000 वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। इच्छित वर मांगो।
2: माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगनी कौन होंगी?
1: हे ब्रह्मा पुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
2: महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें।
1: तथास्तु, मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: हाँ शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन

0: परमपिता, विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई।
1: पुत्र सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
2: परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी।
0: आज्ञा करें प्रभु श्री हरि, मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा?
2: नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदा व्रत करो। एकाग्र चित होकर रुद्र देव का ध्यान करो।
1: महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
0: कैसी आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर।
2: हे दुर्गा पते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं।
3: निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए। हरे,
2: सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं।
3: लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है।
1: मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है।
3: तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव?
1: देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा।
3: विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूँ, भोगों से दूर रहता हूँ, विवाह को बंधन मानता हूँ। और फिर विधात, मेरे संघार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है?
1: हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
3: आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्री हरि और ब्रह्मदेव, आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं, हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे। परंतु?
2: परंतु क्या रुद्रदेव?
3: ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न ना डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा।
2: महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं।
1: वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त हैं। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें।
3: आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी।
0: देवाधिदेव, जगतपते, आप, मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई।
3: दक्षनंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो देवी, मांगो, कोई वर मांगो दक्षनंदिनी। मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो। बोलो देवी।
0: कुछ कुछ मांगू तो आप दे पाएंगे?
3: हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मांग कर तो देखो।
0: आप हाँ। मेरे आप मुझे मुझे आप
3: मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ।
0: देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई।
4: आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है।
5: नारायण नारायण,
4: रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है।
6: स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
7: इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है।
6: मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
7: अरे अरे सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं।
1: हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ।
7: हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं।
3: हे ब्रह्मा जी,

0: आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं?
1: देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा।
0: तथास्तु।
2: शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ

0: साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।
1: श्रोताओं, आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 11वें अध्याय से 25वें अध्याय तक से लिया था। अगले अंक में दक्ष कथा को आगे बढ़ाते हुए दक्ष यज्ञ और सतीदाह का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा।

ओम नमः शिवाय। इस विशाल ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक, सर्वोच्च शक्तिशाली, आदि और अनंता, देवादिदेव महादेव की महिमा का वर्णन तो वेद पुराण और शास्त्र भी नहीं कर सकते हैं। सुर असुर, मानव और दानवों के इष्ट देव, करुणामयी भगवान सदा शिव ऐसे महादानी और वरदानी हैं कि जिनकी स्तुति संपूर्ण करने के लिए अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। किंतु यह भी सत्य है कि भगवान शंभुनाथ की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री शिव चालीसा सर्वोच्च और शुभ फलदायी माना गया है। श्री शिव चालीसा का पाठ सुनने वालों के लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना कि पाठ करने वालों के लिए। इसका नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के मनोरथ, जैसे घर में सुख शांति, धन यश वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ सभी प्रकार के रोगों और दोषों का सर्वनाश भी होता है। जिस प्रकार भगवान शिव किसी एक जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो तो सभी के इष्ट हैं। ठीक उसी प्रकार श्री शिव चालीसा की स्तुति का समान रूप से अधिकार इस चराचर जगत के सभी मानवों को है। मन के पावन भाव से की गई भक्ति से हर्षाने वाले श्री शंभुनाथ को शिव भक्तों की ओर से समर्पित है श्री शिव चालीसा।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अर्थात सिद्ध पुरुषो, गंधर्वो, यक्षो वगैरेथी असुरो आणि अमरो देवोथी सेवाता सिद्धि आपणारा ते सिद्धिदात्री देवी अमने तमने सर्वने सिद्धि आपणारा था। भारतीय दार्शनिक धारा प्रमाणे मुक्ति के मोक्ष ने एक मोटी सिद्धि कहेवामां आवे छे। इथे माताजी ने प्रार्थना करिए कि हे भगवती परांब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका सूर्यमंडल अंतर्गता जगदबीजा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतात्मिका परांबा परांब परांबा सिद्धिदात्री अपने अमे मोक्ष माटे प्रणाम करी। सिद्धिदात्री देवी नो आराधन करी त्यारे देवी मात्रनी आराधना नो सौंदर्य लहरी नो आ एक श्लोक शंकराचार्य जी नो स्मृति पथ में आवे छे।

दक्षिणा बनो, शयन आसन आदि क्रियाओं, अपना यागनी यजन कर्मनी आहुति रूप बनो। अमारी सुख सामग्री आपने थतू आत्मार्पण बनो, अने अमारी कोई पण शारीरिक के मानसिक क्रिया

तो शक्रादी स्तुती पण किती सुंदर बहु जाणी ती शी। ओम शक्रादय सुरगणा हे श्लोक तू जाणीतोष। नमतीक पद्य द्वारा वंदना करिये।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।